0: जिन्ना जित करे तू कमाले ओना करनी गिण गिण बदले पऊगा देना बैरनी
1: जिन्ना जित करे तू कमाले ओना करनी गिण गिण बदले पऊगा देना बैरनी
0: जिन्ना जित करे तू कमाले ओना करनी गिण गिण बदले पऊगा देना बैरनी
1: जिन्ना जित करे तू कमाले ओना करनी गिण गिण बदले पऊगा देना बैरनी
0: ला के समाधि मार चौंकड़े हुण ना तवी दे उत्ते बैणगे सिखां दी वैर ने हकूमते एक दिन लेखे देने पैणगे सिखां दी वैर

गुरु प्यारी साहसा जितनी का हाजिर न भगवान कर अति सत्कार जो बहुत ही विद्वान की पाई हरजोत सिंह जी जखमी साहब ओ हुण आप जी नूं कीर्तन राही निहाल कर लई जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

मेरी बेनती है, एक बार सारे मन में समझाइए। आखिर मांगे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज समृत सतगुरु कृपा करके सब आखिर।

0: KRPI Radio te tusi sun rahe si live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: परमात्मा प्रगट होया अपने शब्द विच, संसार प्रगट होया फिर शब्द। हर मनुख अपने बोल दे राही प्रगट होंदा है, शब्द दे राही प्रगट होंदा है। वेख के कुछ नहीं पता चलता, आप इतने सारे बैठे गुस्ताखी माप, वेखण नाल उम्र का पता चल जाएगा। ये बिरध है, ये जवान है, ये बच्चा, उम्र दे अंदाजे लग जाने। वेख के कपड़िया का पता चलेगा पहने होया की है, वेख के रंग रूप का पता चलेगा, वेख के इतना पता चलेगा स्त्री है कि पुरुष है, बच्चा है कि जवान है, गोरा है काला है सांवरा है, कपड़े कैसे न, और कुछ भी नहीं पता चलेगा। ये मनुख की है, ये मनुख की है, रजोगुणी है तमोगुणी है सतोगुणी है शांतमयी है क्रोधी है धार्मिक है अधार्मिक है दुखी है सुखी है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। हर मनुख प्रगट होंदा है अपने शब्द विच, अपने बोलना दे राही। शेख सादी साहब कहंदे ने ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जितने चिर तक पंज दस दिन किसी दी बोल चाल ना सुनिए

आओ एक कवाओ एक आवाज तिस्ते होए लख दरिया, उसे कवाओ तो उसे ही आवाज तो लखा जिंदगी दे दरिया चल पे। ते जिंदगी दा दरिया की है सूरज, उसे एक धमाके तो अरबा खरबा सूरज बन गए। एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े होए, ए जमीन उस सूरज दा टुकड़ा। अनंत काल तक ए अग दा गोला ही सी, पूरी ठंडी अज भी नहीं हुई। ए भी मैं अर्ज करते हैं, अजे भी लावे चल देने, अजे भी किधरे किधरे लावे फुट देने। अरबद नरबद धुंधु कारा, धरण न गगना हुक्म अपारा, ना दिल रहन चंद न सूरज सुनने सुन समाए। इस सनाटे देच जो आवाज होई, कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ, वो कवाओ की सी। वो हुण गुरु नानक देव जी महाराज लंबी चौड़ी बाणी च दसदे ने, उस बाणी दा नां है ओहंकार। रामकली राग दे च उहनू दक्कणी ओहंकार करके कहिंदे ने, इस वास्ते रामकली दक्कणी। रामकली पूर्व दी नहीं गायन करने, दक्षिण दी। खो गई गल। गुरु ग्रंथ साहिब दे दो तरह दा संगीत है, दक्षिण भारत दा पूर्वी भारत दा। रामकली दक्कणी, दक्कणी ओहंकार बाणी दा नां ही ओहंकार है। जिवें पहली बाणी दा नां जप है, सत्कार वजो असीं जपजी साहब कहिंदे आ, बाणी दा नां ओहंकार है। ये इस तरह शुरू होंदी है, ओहंकार ब्रह्मा उत्पत, ओहंकार किया जिनचित, ओहंकार सैल जुगवाय, ओहंकार वेद निर्मय। ये बाणी किथे उचारण की थी? भारत दे इक तीरथ है, उस तीरथ का नाम है ओहंकार। इंदौर तो 40 मील दूरी थे, बाई रोड जो हजूर साहब जाते हैं दिल्ली तो, उन्होंने रस्ते च पै जाता है। रेलवे स्टेशन का नाम है ओहंकार, शहर का नाम है ओहंकार, मंदिर का नाम है ओहंकार। आ सारे कदीमा दे माहिरीन जो भारत सरकार दे ने, वो कहिंदे ने मंदिर घट तो घट 4000 साल पुराना है। पहाड़ नू तराश के बनाया गया है, बिल्कुल नर्मदा दे किनारे। नर्मदा उसनू टच करके लंघदी है, छू के लंघदी है। उस मंदिर का नाम है ओहंकार। उसे ही मंदिर तो 100 गज की दूरी ते है गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी का, उस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा ओहंकार। मंदिर का नाम है ओहंकार, शहर का नाम है ओहंकार, रेलवे स्टेशन का नाम है ओहंकार। 100 गज की दूरी ते जिथे गुरुद्वारा है, यह ब्राह्मणा की टकसाल सी, ते वेद शास्त्र पढ़ाए जाते सन। इत्थे ही दक्कणी ओहंकार सतगुर ने उचारण की, सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, रिख नाम नाम गुरमुख गोपाला, ओहंकार ब्रह्मा उत्पत, ओहंकार किया जनचित। तू जिसनू ओहंकार कहना पे है, नहीं है ओहंकार तो सारा ब्रह्मंड होया है। वो पहली आवाज की सी ओहंकार। स्वामी महावीर जैन धर्म दे बानी, वो भी कहते हैं पहली आवाज ओहंकार है, उसे तो ब्रह्मंड होया। इस्लाम ते ईसाइयत भी मनती है, सारा पसारा शब्द तो होया, पर शब्द की रूपरेखा होर दसते ने। मुहम्मद साहब कहते ने शब्द कुन है, और ईसा कहते ने वो लोगोस है। लेकिन भारत दे करीबन करीबन तमाम ऋषि मुनि गुरु पीर पैगंबर ते भगत कहते ने वो धुन है ओहंकार। फिर सतगुर ते एका लाने ने, होर दूजी धुन नहीं है। कारण उपनिषदां दे अधे ऋषि कहिंदे ने वो धुन ओहंकार है, पर अधे कहिंदे ने ओम है, ओम वो कहिंदे ने ए धुनी होई, अधे कहिंदे ने ओहंकार है। महाराज ने एक ला दिता, नहीं होर कोई धुन नहीं, एक ओहंकार, एक यही धुन है, यही धुन है ओहंकार। आद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जाप साहब, ओहंकार आद कथनी अनाद। इस ओहंकार की धुन तो फिर किवें पसारा होया, अरबा खरबा सूरज पैदा होए, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े होए, ये जमीन सूरज का टुकड़ा है, ये फिर पसारा किवें होया। गुरबाणी जिस तरह खुलासा कर दी है, मैं फिर कल दिन नो थोड़े सामने रखने की कोशिश करांगा। मैं सुस्त रह जाना, घड़ी अगे लंघ जाती है, फिर मैनू रुकना पैंदा है।
तो समा हो गया, बाकी विचारा मैं कल।

जे बंदा ओदे परोपकार नूं भुला के भी ओदे लई निंदिया करदा पिया, मेरा ख्याल उह बंदा कदी धर्मी नहीं हो सकदा जिहड़ा दस दिसदे होए दा शुकर नहीं करदा, अन दिसदे दा शुकर किने करना। जिहड़ा सच भी जुड़िया है, सबर भी जुड़िया है, सबर वाले ही शुकराना करदे आ, क्योंकि तृष्णा वाले कदी शुकराना नहीं कर सकदे। तृष्णा ते ओह भांडा है जिहदा तला कोई नहीं, जिस बाल्टी का तला है ओही भर के कहिंदी सबर मैं भरी गई हाँ, जिस बाल्टी का थले तला ही कोई नहीं उहने कदी भरी जाणा। चख मारन वाला बंदा सब कुछ प्राप्त करके भी गंदे टोबे की तरह छप्पड़ की तरह बदबोई छड़दा है। सबर विच जीण वाला कखां दी कुल्ली विच रह के भी दरिया की तरह जिंदगी जींदा। जिहड़ा बंदा सिर्फ किसी के बुरे दे ख्याल ही पैदा करता है ना, गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे भावें दस सुखमनी साहिब दे पाठ करे उहदा मन कोई नहीं टिकना। जिहड़े बंदे चिट्टे कपड़े पाउंदे आ, साफ सुथरे कपड़े पाउंदे आ, कादे वास्ते? टन ढक्कन नहीं लई, लोकां नूं दिखाउण वास्ते कपड़े पाउंदे आ बड़े कीमती, कि लोकां विच असीं खिच दा केंद्र बणीए। सच इह इस दुनिया च लोक अपने वास्ते कोई नहीं, जे जींदे लोकां वास्ते जींदे। साडा कपड़ा भी लोक वेखण, साडे गहने भी लोक वेखण, साडी गड्डी भी लोक वेखण, साडा हार शिंगार भी लोक वेखण। सच इह बंदा अपने वास्ते कोई टावा टावा जींदा, इत्थे बंदा दुनिया वास्ते जींदा। ते दुनिया च दो तरह के लोग जींदे आ, जां नकली जींदे आ जां कन्ना लई जींदे। बंदा सच इह समाज विच, बिरादरी विच, शहर विच अपनी धौस जमान दे लई अपना नक रखण वास्ते अपने वित्तों वध काम करदा है, चाहे वह विआह दा करे, चाहे वह कोई होर काम करे। ओदा ओ कहिंदा है भी मेरी लोकां च कोई थां है, मेरा स्टेटस है, जे मैं ना कीता लोक की कहणगे, इत्थों तक करजा चुक के भी अपना नक रखदा है। ओ प्यारिया चेते रखी, इत्थे जिन्नी मर्जी शो शबटा फूफां करी जा, एक परमात्मा दे नाम तो बिना तेनू जमदूतां ने अगे बन के लै जाणा। ओ कमलिया बंदिया तू हंस सैं, हंस दा काम है मोती चुनना, हंस दा काम है दुध ते पानी वाक करके दुध नू खा लैंदा सी फुटियां, हंस दा काम है के डूंगे पानी नू तर जाना, हंस दा काम है दरिया दियां लहरां नू चीर के निकल जाना। कमलिया बनाया तेनू हंस सी, ते तू आ चमड़ी दा पिंजर इहनू खाई जाना। तू इन्ना कुछ परोस के खा रहा है, तू इन्ने तन ते कीमती वस्त्र पा रहा है, कादा तेरा खाना ते कादा तेरा पाना, जिस देण वाले परमात्मा दा नाम ही तेरे मन विच नहीं। मैं सिर्फ अज बेनती कर रहा, खा लेना ते पा लेना कि बंदा इहदी आखरी मंजिल ही जी। उंज दस्तार सोहनी तो सोहनी सजानी चाहीदी है, पर किसे चीज नूं खौमे नाल जोड़ के नहीं वेखना, मेरी बेनती है। ते जे मैं इस करके पग दा बन रहा सोहनी के लोकां च खलो के लोकी वेखण, जे आपां गुरु नाल जोड़ के दस्तार नूं रखांगे ते प्यारिओ ओह किरपा बन जाएगी। ते जे आपां कपड़े शस्त्र वस्त्र अपनी ईगो नाल जोड़ लैना, याद रखियो बस ओह एक रुकावट बन जाणगे। रत्ता पहनण मन रत्ता, जे तू सुरख रंग पाना पसंद करना है ते शब्द की कमाई इन्नी कर कि तेरा मन रंगिया जाए, परमात्मा मेर करे तेनू चेहरे ते कोई रंग लाण दी लोड़ ना पए, तेरे चेहरे दी लाली दसे अंदरों रंगिया होया है। तन जोबन तेरा नाम हे वाहिगुरु जी, लोकी पैसे ते जवानी पिछे खाण ते पाण पिछे जिंदगी कर दिंदे आ, मेरे वास्ते जवानी ते पैसा तेरा नाम है। जे नाम आ गया चेते बुढ़े भी जवान आ, जे नाम चेते नहीं आए जवान भी बुढ़े हो गए। जिन्हां दे बेड़े पुराने हो जाण ना, उन्हां दा दिन सारा हौकियां च निकलदा है। जिन्हां दे शेक अंदर भर लग पैन वाशना, वह रात नूं डिप्रैशन च नींद नहीं आउंदी। बाबा फरीद साहब कहिंदे तेरा बेड़ा डुब चलिया, क्योंकि दिन दुखां च गया, रात तेनू बेचैनी डिप्रैशन तेरी सूलां च निकली। वह गुरु तेनू खलोता सराहणे कहिंदा वह तेरा बेड़ा डुब चली, बचा लै जे बचा सकना। कोई गल नहीं, जिंदगी भावें जिन्नी मर्जी लम्मी होवे, उन्हां दी बेड़ी कदी नहीं डुबदी हुंदी जिन्हां दे सीने विच गुरु दा शब्द हुंदा। गुरु तेग बहादुर साहिब ते बेड़ी बन्ने लाण आए सन जी। जे किसी दा वपार दा बेड़ा डुबदा सी उह किनारे ला दिता, जे किसी दे धर्म दा बेड़ा डुबदा सी उह सिर दे के किनारे ला दिता। कहिंदे उत्थी चौंकड़ा मार के बह गया, उहनूं जहाज भुल गया, उहनूं तूफान भुल गया, उहनूं सिर्फ गुरु नानक चेते आ गया। एक जपजी साहिब दा पाठ उहने सुरत नाल कीता, बस केती छुट्टी नाल किया ते बेड़ा किनारे लग गया सी।

0: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵਹੇ
0: ਜਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ
0: ਜਿਸੈ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸਰਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਇਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵਹੇ
0: ਜਿਸੈ ਤਿਆਗਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕ ਜਸ ਗਾਵੀ ਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਲ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ
0: ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ
0: ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਰੱਬ ਦੀ ਜਪਤ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਵੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ
0: ਨਿਬਲਾ ਬੋਤ ਸਰਾਮ ਸਨੇਹੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ
0: ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ
0: ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ
0: ਮਨ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀ ਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਾਰੀ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੋ ਕਭੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ
0: ਰਾਗ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ
1: ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ
0: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸਤਿ ਸਹਿ ਧਿਆਈ
1: ਕਿਸੇ ਧਿਆਈ ਜੋ ਏਕ ਲਖੈ
0: ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਤ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹੇ ਕਰਨ ਨਾਦ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖਿਆ ਵਿਸਮਾਦ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਵਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹੇ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵਹੇ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ
1: ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਬਰ ਕਤ ਲਾਗੋ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ
0: ਕਿਸੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਓ ਰਾਜ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ
1: ਆਪ ਜਪਾਈ ਜਪੈ ਸੋਨਾ
0: ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ
1: ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤੂਤਨ ਹੋਏ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ
0: ਆਪੋ ਕਛੁ ਨ ਕਿਨਹੁ ਲਿਆ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲੱਗੇ ਹਰਨਾਥ
0: ਨਾਨਕ ਇਨਕੇ ਕਛੁ ਨ ਹਾਥ ਸਲੋਕ
1: ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸਮੁਖਤਾ ਹੋਏ
0: ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਕਲੀ ਖੋਤ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਵੇਰਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਏਕੋ ਉਪਰ ਜਤਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਹੇ ਸਮਾਨੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਕਥੂੰ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਤਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸੋ ਨੀ ਬੈਰ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਤਾਂ ਜੈਸਾ ਵਿਆਪ
1: ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਪੜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰ ਹੂੰ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਿਰ ਪਹੁੰਚੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰ ਹੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਧਨ ਬੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ
1: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੋ ਬਸੁਰ ਦੇਵਾ
1: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਗਲ ਜਨਮ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋ ਤਨਹਾਲ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕਲੂਕਤ ਹਰੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ
1: ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਬਸੈ
0: ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਘੜ ਘੜ ਜੀਠਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੈ
0: ਜਿਤਾ ਸੁਣ ਤੇ ਤਾ ਬਖਿਆਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ ਸਲੋਕ
1: ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ
0: ਅਵਰ ਨ ਭੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ
1: ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ
0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ
0: ਜੈਸੇ ਜਲ जल में कमले लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
0: ज्यो बसदा को खुद को चिंतन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक ज्यो पावक का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं महान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा
0: मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जन प्रव्याप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी का ना ही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम प्रवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगुद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कल सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का विता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सताया देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदा अखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी अपरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और तारे जो अंतर नाम सर्व में देख भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श
1: कत्रिया रूप न देखे नेत्र
0: साध की टहल संत संग हेत
1: कर्ण न सुने काहू के निंदा
0: सब ते जाने आप को मंदा
1: और प्रसाद विखिया पर हर है
0: मन की वासना मन ते टर
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विसन की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कत हो वैने कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बांचे
0: केवल भगत कीर्तन संग रचे
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अबरह नाम जपावे
0: नानक को वैष्णो परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भक्त का रंग
0: सगल त्यागे दुष्ट का संग
1: मन से बिन सह सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पे विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबोध है
0: राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जो न आवे
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल
0: सुख मैं जाने अस्थूल
1: वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदाया देश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: जो वरना में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: साध संग पावे जन कोई
1: कर कृपा अंतर उतार है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है
1: सर्व रोग का यो खद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण काम
1: काहू जुगत कितने न पाइया धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम किस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दरगा परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सो जी पर
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: रब की आज्ञा आत्म हितावै
0: जीवन मुक्त सो कहावै
1: तैसा हरक तैसा उस सोग
0: सदा अनंत नहीं वियोग
1: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: तैसा अमृत तैसी बिक काटी
1: तैसा मान तैसा अभिमान
0: तैसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताई साई जुगत
0: नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाउ
0: जित जित घर रखे तैसा तन नाम
1: आपे करन करावन जोग
0: भावे सो ही फन होग
1: असरियो आप होए अंत तरंग
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक
1: उस्त करे अनेक जन अंत न पारावार
0: नानक रचना प्रभ रची बहु विधि अनक प्रकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी,
0: कई कोट आचार व्यवहारी,
1: कई कोट भय तीर्थ वासी,
0: कई कोट बन प्रमय उदासी,
1: कई कोट वीर के स्रोते,
0: कई कोट तपीसर होते,
1: कई कोट आत्म ध्यान धारी,
0: कई कोट कब का विचारे,
1: कई कोट नवतन नाम त्यावहे,
0: नान करते का अंत न पावे,
1: कई कोट भय अभिमानी,
0: कई कोट अंध अज्ञानी,
1: कई कोट कृपन कठोर,
0: कई कोट अभिग आत्म ने
1: कोर, कई कोट पर दर्प को हिरहे,
0: कई कोट पर दुख न करे,
1: कई कोट माया श्रम माहे,
0: कई कोट पर देश परमा है,
1: जित जित लाभ होते तित लगना,
0: नानक करते की जाने करता रचना,
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
0: कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंखी सर्प उपाय,
0: कई कोट पात्र वृक्ष निपजाए,
1: कई कोट पवन पानी बै संतर,
0: कई कोट देश भू मंडल,
1: कई कोट ससियर सूर नखत्र,
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिर छत्र,
1: सगल समग्री अपने सूत धार,
0: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार,
1: कई कोट राजस ताम सातक,
0: कई कोट वेद प्राण स्मृति अर शास्त्र,
1: कई कोट की रतन समुंद,
0: कई कोट नाना प्रकार जंत,
1: कई कोट की ये चिर दीवे,
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे,
1: कई कोट जख के निर्पिशाच,
0: कई कोट भूत प्रेत सु कर मृकाच,
1: सबे नेरा सब हूं ते दूर,
0: नानक आप लिप्त रे आप प्रभुर,
1: कई कोट पाताल के वासी,
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है,
0: कई कोट बहु जोनी फिर है,
1: कई कोट बैठ सही खाहे,
0: कई कोट काले थक पाहे,
1: कई कोट की ये धनवंत,
0: कई कोट मा चिंत,
1: जय जय भाणा तह तह राखे,
0: नानक सब किश प्रभ के हाथे,
1: कई कोट भई वैरागी,
0: राम नाम संग तिन लिव लागी,
1: कई कोट प्रभ को खोजंते,
0: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते,
1: कई कोट दर्शन प्रभ्यास,
0: जिनको मिलियो प्रभ विनास,
1: कई कोट मांगे हैं सत्संग,
0: पार ब्रह्म तिन लगा रंग,
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न,
0: नानक तेजन सदा तन तन,
1: कई कोट खानी अरखंड,
0: कई कोट आकाश ब्रह्मांड,
1: कई कोट होए अवतार,
0: कई जग की नु विस्तार,
1: कई बार पसरियो पासार,
0: सदा सदा एक एक अंकार,
1: कई कोट कीने बहु भांत,
0: प्राप्त होए प्रभ माहे समात,
1: ताका अंत न जाने कोई,
0: आपे आप नानक प्रभ सोए,
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास,
0: जनहो वत्या तम प्रगास,
1: कई कोट तत्व के बेते,
0: सदा नहारे एको नेत्रे,
1: कई कोट नाम रस पीव है,
0: अमर भय सद सद ही जीव है,
1: कई कोट नाम गुण गावे,
0: आत्म रस सुख सहज समावे,
1: अपने जन को साथ साथ समारी,
0: नानक हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक,
1: करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई,
0: नानक तिस बलहार ने जल थल मई अल सोए, अष्टपदी
1: करण करावन करने जोग,
0: जोत सभावे सोई होग,
1: फिर मैं थाप उताप नहारा,
0: अंत नहीं किश पारा वारा,
1: हुक्मे धार अधार रहावे,
0: हुक्मे उपजे हुक्म समावे,
1: हुक्मे ऊच नीच व्यवहार,
0: हुक्मे अनेक रंग प्रकार,
1: कर कर दिखे अपनी वडियाई,
0: नानक सब में रहा समाई,
1: रब भावे मानो गत पावे,
0: रब भावे ता पात्र त्रावे,
1: रब भावे बिन सास ते राखे,
0: रब भावे ता हर गुण पाखे,
1: रब भावे ता पत उधारे,
0: आप करे अपन विचारे,
1: दोहा श्रेया का आप स्वामी,
0: खेले से अंतर जामी,
1: जो भावे सो कार करावे,
0: नानक दृष्टि और न आवे,
1: बहु मनुख ते क्या होए आवे,
0: ज्योत सभावे सोई करावे,
1: इसके हाथ होए ता सब पिछले,
0: ज्योत सभावे सोई करे,
1: मन जानत बिखिया मह रचे,
0: जे जानते अपने आप बचे,
1: भरमे भूलै दह दिस धावे,
0: नमक माहि चार कुंड फिर आवे,
1: कर कृपा जस अपनी भक्त दे,
0: नानक ते जन नाम मिले,
1: छिनवे नीच कीट को राज,
0: पार ब्रह्म गरीब नवाज,
1: जाका दृष्ट कछु न आवे,
0: जिस तत्काल दर दिस प्रगटावे,
1: जाको अपनी करे बख्शीस,
0: ताका लेखा न गणे जगदीश,
1: जियो पिंड सब तिसकी रास,
0: कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास,
1: अपनी बनत आप बनाई,
0: नानक जीवे देख बढ़ाई,
1: इसका बल ना ही इस हाथ,
0: कल करावन सर्व को नाथ,
1: आज्ञाकारी बपरा जियो,
0: जोत सभावे सोई फन थी,
1: कब हूँ ऊंच नीच मैं बसे,
0: कब हूँ सोग हर करंग हसे,
1: कब हूँ निंद चिंद व्यवहार,
0: कब हूँ ऊब आकास प्याल,
1: कब हूँ बेता ब्रह्म विचार,
0: नानक आप मिलावन हार,
1: कब हूँ नृत करे बहु भांत,
0: कब हूँ सोए रहे दिन रात,
1: कब हूँ महा क्रोध विकराल,
0: कब हूँ सर्व की होतर वार,
1: कब हूँ होए वह बड़ राजा,
0: कभु भिखारी नीच का साजा,
1: कभु अब कीर्त में आवे,
0: कभु पला पला कहावे,
1: जो प्रभु राखे ते भी रहे,
0: वर प्रसाद नानक सच कहे,
1: कभु होए पंडित करे बख्यान,
0: कभु मौन तारी लावे ध्यान,
1: कभु तट तीर्थ स्नान,
0: कभु सिद्ध साधक मुख ज्ञान,
1: कभु पीठ हस्त पतंग होए दिया,
0: अनक जौन परमे परमिया,
1: नाना रूप जो स्वांगी दिखावे,
0: जो प्रभु भावे तवे न चावे,
1: जो भावे सोई होए,
0: नानक दूजा अवर न कोए,
1: कभु साध संगति पावे,
0: उस स्थान ते बौर न आवे,
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश,
0: उस स्थान का नहीं विनाश,
1: मन तन नाम रते एक रंग,
0: सदा बसे पर ब्रह्म के संग,
1: ज्यों जल मह जल आए कटाना,
0: ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना,
1: मिट गए गवन पाए विश्राम,
0: नानक प्रभ के सद कुर्बान श्लोक,
1: सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले,
0: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नक पाती होवत स्वान
1: जो जान है मैं जो बनवंत
0: सो होवत बिष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन कुम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे
0: नान की है मुक्ति अग्नि सुख पावे
1: धनवंता हो कर कर भावे
0: तरण समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: और भीतरता का हुए विनाश
1: सत्य आप जाने बलवंत
0: होए जाए पसवंत
1: सेना बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हो तारी
0: शरम पावे सकले बरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट न आवे
1: सर्व की रेन जा का

केसर बद्र पेशा केसर बद्र काला केसर बद्र पाला केसर बद्र हंता केसर बद्र गंता केसर बद्र पेखी केसर बद्र पेखी।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, गुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहे

0: विस्माद, वेद विस्माद, जीव विस्माद, पेल विस्माद, रूप विस्माद, रंग विस्माद, नंगे फिरे जंत विस्माद, पौन विस्माद, पानी विस्माद, अग्नि खेडे बिडाणी विस्माद, धरती विस्माद, खाणी विस्माद, साह लगे पराणी विस्माद, संजोग विस्माद, वियोग विस्माद, भुख विस्माद, भोग विस्माद, सिफत विस्माद, साला विस्माद, उजड़ विस्माद, राह विस्माद, नेड़े विस्माद, विस्माद, दिखे हाजरा हजूर, वेख विडान रहया विस्माद, नानक बुझण पुरे पाग महला पहला।
1: कुदरत दिसै, कुदरत सुनिय, कुदरत भाव सुखसार, कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्वाकार, कुदरत वेद प्राण कतेबा, कुदरत सर्व विचार, कुदरत खाना पीना पहनन, कुदरत सर प्यार, कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान, कुदरत नेकियां, कुदरत बदिया, कुदरत मान बमान, कुदरत पौन पानी बह संतर, कुदरत धरती खाक, सब तेरी कुदरत।

पूरे नाद उन्हां पे आवे ओई साध कुड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोर करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक उड़ रहा भरपूर मत्थे टिका तिर धोती का खाई हाथ छुरी जगत का सा।

दूसरा अपनी अकल तो छोड़ खा। अकल इतनी महान कि दुनिया छोटी हो गई है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपनी अकल तो चोट खा के भी दुनिया विच कुछ सियाने पुरुष निराश होए ने, उदास होए ने। तीसरा संसार तो ही कोई वड्डी चोट लग गई है, कोई हादसा हो गया है। छोटी दा धनहार से दिवालिया हो गया, बड़ी प्रतिष्ठा से बेइज्जती हो गई है, बड़ी समर्था ते शक्ति से सब जांदी रहे। कि जगत तो चोट खाके भी मनुख पूर्ण तौर ते निराश हो सकता है, जगत तो और उदास हो सकता है। हुण मैं अर्ज करा, जिहड़ा अजे तक टोटली निराश नहीं, उदास नहीं, पहला तो कोई गहरा सत्संगी नहीं है, कोई गहराई नाल सुनदा ही नहीं है। जैसे मैं सवेरे अर्ज कीती सी, मनुख बहुत सारे धर्म ग्रंथ ते किताबां पढ़ लैंदा, बड़िया बड़िया डिग्रियां हासिल कर लैंदा है, पर महाराज कहिंदे ने उतने चिर तक वो मूर्ख है जितने चिर तक सिर दे लेख नहीं पढ़दा। काया कागद मन परवाणा, सिर के लेख ना पढ़े आणा। पर कई पुछण लग पे, वो सिर दे लेख किवें पढ़ी है? मैं सवेरे खुलासा कीता सी, सिर दे च चलदे ने विचार, उन्हां नूं वेखणा ही पड़ना है। सिर दे च चलदी है सोचनी, उन्हों वेखना ही पड़ना है। सिर दे च चलदियां ने यादा, उन्हों वेखना ही पड़ना है। कोई नहीं वेखदा, अंदर विचार चलदे रहिंदे ने, कौन देखदा है? धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, एहो मन आर सी कोई गुरमुख देखे। मन ते शीशा है, इस शीशे देचों अपने विचारां नूं कोई गुरमुख ही देखदा, हर बंदा नहीं देखदा। हर बंदा दूजियां नूं देखदा रहिंदा, दूजे दृश्य दूजियां नूं, कौन अपने आप नूं देखदा है? इस वास्ते साहिब कहिंदे ने, एहो मन आर सी कोई गुरमुख देखे। मन दर्पण है, शीशा है, कोई विरला ही मनुख देखता है। हुण मैं अर्ज करा, ये देखना ही पड़ना है, मेरे अंदर की विचार चल रहे पे, देखने ही पता चल जाएगा की चल रहा है, की सोचनी चलती रहती है दिन भर, देखने ही पता चलेगा, की यादा चलदिया रहिंदियां ने सिर दे च, देखदे ही पता चलेगा, ये देखना ही पढ़ना है। काया कागद मन परवाणा, सिर के लेख ना पढ़े इयाणा। उतने चिर तक ये इयाणा है, नादान है, भावें कितना पढ़ा लिखा है, पर जेनू सिर दे लेख पढ़न दी जाच नहीं आई, इयाणा है, सियाणा नहीं है। मैं फिर दोहरावा, सिर दे लेख की है? जो सिर दे च सोचनी चलती रहती है उन्नू देखना ही पढ़ना है, जो सिर दे च यादा चलदियां रहिंदियां ने उन्नू देखना ही पढ़ना है, जो सिर दे च विचार चलते रहिंदे ने इन्नू देखना ही पढ़ना है। पर महाराज कहिंदे मनुख बड़ा इयाणा है, बड़े कुछ किताबां पढ़ लैंदा है, सिर दे लेख नहीं पढ़ता। कि जब सिर दे लेख नहीं पढ़ता तो अपने सिर का पता भी नहीं चलता, मेरा सिर की है, कुछ भी नहीं पता चलता, मैं की हाँ कुछ भी नहीं पता चलता। मनुख जो कुछ दिखाई दे रहा है ये नहीं है, मनुख दे अंदर जड़े विचार चलते ने मनुख ओ है। मनुख जो कुछ दिखाई दे रहा है मनुख ये नहीं है, मनुख दे अंदर जड़ियां यादा चलदियां ने मनुख ओ है। मनुख जो कुछ दिखाई दे रहा है ये नहीं है, मनुख दे अंदर जो सोचनी चलती रहती है मनुख ओ है। पर महाराज कहिंदे ने तो कोई पढ़ता ही नहीं। काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पढ़े आना, कौन सिर दे लेख पढ़ता है?

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musiala baby, yeah.
2: Mercy.

सौ साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

सतनाम कर्ता पुरुख निरभो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नान के राम दामोदर माधवे गुरु रूप सत्संग जीओ पते प्रवान करने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। सो दर कहा सो घर कहा जित बह सर्व संभाले। ओ दर कैसा है ओ घर कैसा है हे प्रभु जिथे बैठ के तू तमाम ब्रह्मंड दी जीवां दी संभाल करदा। फिर सतगुर रामकली राग विच ऐसा कहंदे ने रामकली मल्ला पहला जित दर वसें कवन दर कहिए दरां भीतर दर कवन लहे जिस दर कारण फिरां उदासी सो दर कोई आए कहे सारे दरां तो उदास होके निराश होके जिस दर्दी मैं तलाश कर रहा कोई दसे कोई ते दसे। एक हकीकत है जितने चिर तक संसार दी प्यास बड़ी प्रबल है निरंकार दी प्यास पैदा ही नहीं होती। जितने चिर तक पदार्थां दी भुख बड़ी प्रबल है परमात्मा दी भुख पैदा ही नहीं होती। ऐसा क्यों हो जाता है? दरअसल शरीर दियां जिहड़ियां लोड़ां ने उन्हों मन अपनियां लोड़ां बना लैंदा। कुछ लोड़ां शरीर दियां ने पर उन्हां लोड़ां नाल मन अपने आप नूं जोड़ लैंदा है तो लोड़ां लोभ बन जांदियां तो फिर लोभ दी कोई सीमा नहीं है कोई सीमा नहीं है। गुरबाणी दी जो बारीकियां ने मैं आप जी दे सामने रख रहे हां जिस दिन सच्चे नाम दी भुख पैदा होई सच्चे नाम की लागे भूख तो समझ लेना जिहड़ी झूठ दी भुख सी ओ शांत हो गई। झूठ किस नूं कहिंदे ने जो है ते नहीं हो जांदा उहनूं मिथ्या कहिंदे ने है पर नहीं हो जांदा। बचपना है सी नहीं हो गया जवानी है एक दिन नहीं हो जाती बुढ़ेपा है एक दिन नहीं हो जाता ये जीवन है एक दिन नहीं हो जाता। इन अखां नाल जो कुछ भी दिखाई

मन की यात्रा रुक जाती है। ऐसा नहीं कि मन टिक जाता है, मन गर्दिश दे रहा है, वो सही गर्दिश जिन्हों घूमण खैरी कहते हैं, जिन्हों चक्कर कहते हैं, और मन सीधे रस्ते तो भटक जाता है। तन पदार्थ है, पदार्थों तो बने हैं, मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण ये पदार्थों तो नहीं बनेगा, ये सीधा जोत स्वरूप है। खैर हुण मैं मूल गल आप जी के सामने आरंभ करा। अनंत काल तक जो धुंध सी, ये पूरा खुलासा आप सरवन कर रहे हो, अरवद नरवद धुंधु कारा धरण न गगना हुकम अपारा नांद न रैन चंद न सूरज सुनने सुन समाध लगाएगा। ये दास ने काफी खुलासा थोड़े सामने किया, धुंध ही धुंध से। उसे धुंध दे एक धमाका होया, आवाज हुई, एक कवाओ होया, एक बोल होया, कीता पसाओ एको कवाओ। तो वो कवाओ की से, वो ब्रह्मंड दी पहली आवाज से, पर वो आवाज की से कलगीधर कहिंदे ने ओ अंकार आद कथनी अनाद, अनादि कथनी पहली आवाज की सी ओ अंकार। इनू कबीर भी कहिंदे ने ओ अंकार आद मैं जाना लिखिया रमेटे ताए नवाना। इनू धन गुरु नानक देव जी महाराज ते बड़ी लंबी चौड़ी बाणी च बयान करदे ने, और उस बाणी दा नाम भी है ओ अंकार। ओ अंकार ब्रह्मा उत्पत, ओ अंकार किया जिन चित, ओ अंकार सैल जुगवै, ओ अंकार वेद निर्मय। हुण इस दे च मैं थोड़ा समा ना लवां क्योंकि मैं सारा खुलासा कर बैठा। इस धुन तों अरबां खरबां सूरज पैदा है। पहले सूरज नहीं सी, ना दिन रैन चंद ना सूरज सुनने सुन रहा है, ना दिन सी ना रात सी ना सूरज सी ना चंद्रमा सी ना ए जमीन सी ना आसमान सी, ना दिन रैन चंद ना सूरज सुनने सुन रहा है। अरबद नरबद धुंधु कारा धरण ना गगना, ए धरती नहीं सी, गगन भी नहीं सी, ये ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे नहीं सन। इस धुंध दे एक कवाओ होया, कवाओ ओवंकार, उस तो अरबां खरबां सूरज बने, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े, धुंध पानी बन गई, ए धरण ए धरती सूरज दे टुकड़ा। समा पाके जब ठंडी होई तो ये फिर पत्थर दे रूप दे प्रगट हो। संसार दे आकार पहले पत्थर दा बनया, पत्थर लखां साल दी लंबी यात्रा तो बन मिट्टी बन बनस्पति बनया, बनस्पति लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद पशु पक्षियां दी शक्ल दे प्रगट होया, और पशु पक्षी लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद जिस रूप दे प्रगट होए उन्हों मानव कहिंदे ने, मनुख कहिंदे। चूंकि मनुख उन्हां सारियां तो लंघ के आया है, तो कुछ ना कुछ संस्कार सारियां दे इहदे विच है गए। पत्थरां तो लंघ के आया है, बनस्पति तो लंघ के आया है, पशुआं तो लंघ के आया है, मनुख बने है। मैं एक मिनट लवा, पत्थर टोटली सुत्ता होया है तो सुते हुए की कोई लोड़ नहीं आती, पत्थर की कोई लोड़ नहीं। पत्थर जब मिट्टी बनके बनस्पति के रूप में प्रगट होया है, तो थोड़ी जिहा बनस्पति जागी उसकी लोड़ है, पानी उसकी लोड़ है, प्यास लगती है। बनस्पति लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद जिस रूप में प्रगट हुई, वो पशु पक्षी इन्हां नूं निरी प्यास ही नहीं लगती, भुख भी लगती, इन्हां कोल आवाज भी है। और पशु लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद मनुख की शक्ल विच प्रगट होए,

मनु केवल भूख प्यास से है, आवाज भी है, पर आवाज दे कोल अल्फाज भी ने, अखर भी ने, पशुआ कोल नहीं ने। और मन इस मानव दा पशुआ नालों वनस्पति नालों ज्यादा जागे। मनुष्य दा मतलब भी है जिदे कोल मन है, मन रखदा है, जो विचारां दा प्रवाह रखदा है, सोचनी दा प्रवाह रखदा है, यादां दा प्रवाह रखदा है, चिंतन दा प्रवाह रखदा है, मानुष मनुख। मनुख तो पिछे ने पशु, पशुमा तो पिछे है वनस्पति, वनस्पति तो पिछे है पत्थर आकार रूप दे। इज कह लो वो सारे ही पशु ने, पशु दा मतलब जो पाश देच ने, पछड़े हुए ने, पिछे ने। इना पशुआ देच चौपाए जानवर पंछी, इना पशुआ दे वनस्पति, इना पशुआ दे पत्थर। प्रकृति चलांदी रही, प्रकृति दे अखरी अर्थ ने नेचर नहीं ने, इहदे अर्थ जो इंग्लिश दे च नेचर कर लेंदे ने नहीं, पर कृत, कृत तो पहले, तो कृत तो पहले ते करता है, ये सब कुछ करते तो चलता है, करते पुरुख तो चलता है। कर्ता पुरुष की है एक महाचानन है, प्रकाश है, उसे तो अरबा खरबा सूरज होए। परमात्मा सूरजां दा महासूरज है, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे। परमात्मा तो अनंत सूरज होए, सूरज तो ही अनंत धरतियां होया, पत्थर होए, वनस्पति होई, पशु होए, मानव होए, प्रकृति चलांदी रही। ऐसा भी सी किधरे तन अगे लंघ गया, मन पछड़ गया, किधरे मन अगे लंघ गया, तन पछड़ गया। जैसे कुछ हाथी, गऊ, मोर, हंस, मन ते उन्हां दा अगे चला गया, कुछ एकदा समझ ज्यादा है, पर तन पिछे रह गया, अजे पशु ने, पशु ने। किधरे किधरे तन ते अगे लंघ गया, मनुष्य बन गया, मन पछड़ गया, तो मन दे तलते अजे भी पशु ने। उन्हां नूं ही सतगुरु कहिंदे ने करतूत पशु की मानस जात, तन मनुख दा है, दिखाई मनुख देंदे ने, मनुख नहीं है। अजे इन्हां दा मन इतना विकसित नहीं कि समझ सकन, सोच सकन। अजे पशु ने, अजे ना समझना है। हुण मैं अर्ज करा, चूंकि पत्थरां तो मनुख लंघ के आया है, तो पत्थरां दे अंदर संस्कार ने। वनस्पति तो मनुख लंघ के आया है, तो वनस्पति दे अंदर संस्कार ने। पशुआं तो मनुख लंघ आया है, तो पशुआं दे अंदर छाप है, स्वभाव है, संस्कार अंदर स्वभाव ने, संस्कारां दा संग्रह ही स्वभाव बन जांदा है, वो स्वभाव है। ए सतसंग, ए कथा कीर्तन, ए वाहिगुरु मंत्र दा जप उन्हां संस्कारां नूं धोणा है, कढणा है। जिस दिन अंदरों सारे पशुआं दे स्वभाव संस्कार निकल जांदे ने, उस दिन असली मनुखता प्रगट होंदी है। लोकी कह देंदे ने इहदे अंदर इंसानियत दा मादा है, मनुखता दा मादा है। फिर एक दिन ऐसा आंदा है, जप करदिआं करदिआं ये मनुख मनुखां तो भी अगे चला जांदा है। तुसीं आखोगे अगे किथे चला जांदा है, फिर उन्हों कहिंदे ने मनुख नहीं, ये ते देवता है। जिन मनुख ते देवते की है, करत न लागी बार, ये देवता हो गया, इहदा दीवा जल गया, दीपक जल गया। इहनूं निरा संसार नहीं दिखाई देंदा, संसार विच निरंकार दिखाई देंदा। इहनूं पदार्थां विच परमात्मा दिखाई देंदा। इहनूं सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, ये ते देवता हो गया। पर मैं अर्ज करा, देवते तो भी अगे है एक मंदिर की, ये ते नेरा ही रब दा रूप है, परमात्मा हो गया। परमात्मा तो मनुख आया है,
परमात्मा होना ही एदा भविष्य है और कुछ भी नहीं। फरवरी दे महीने की गल है, अमृत वेले मैनू किसी ने फोन किया कानपुर दिल्ली तो। मैं भी बड़ा हैरान है, 5:30 के करीब कौन फोन करता पे। मैं दिल्ली तो सी कोई नौजवान, कहिंदा ज्ञानी जी मैं सुनया तुसी कुछ भविष्य बारे भी जानते हो। मैं हैरान होया, सुनया तुसी ज्योतिषी हो भविष्य बारे भी जानते हो। मैं कहा जानदा, मैं भी कह दिता जानदा। 21-22 फरवरी नूं संत अतर सिंह जी की बरसी दिल्ली मनाई जानी सी, मैं उस ते पहुंचना सी, पोस्टर लगे हुए सन। कहन लगे सानू पता तुसी 21-22 नूं आ रहे हो, फिर असी आ जाने हां थोड़े कोल, असी भविष्य अपना जाणांगे। मैं कहा 21-22 अजे दूर है, मैं तेनों हुणे ही भविष्य दस देना। कहन लगे हुणे फोन ते दस दोगे? मैं कहा फोन ते दस देना। की है साडा भविष्य? मैं कहा सारे जीवां दा भविष्य है परमात्मा होना, होर कोई भविष्य नहीं। इस तो पहले जो कुछ भी है रस्ते च ही है, कुछ भी नहीं है, भटकना ही है। हर जीव दा भविष्य है परमात्मा होना, परमात्मा होना, परमात्मा होना ही मनुख दा भविष्य है। उन्हें एक दिन जो है फोन रख दी, ये जवाब तसली बख्श नहीं लगे। शेख सादी साहब भी कहते ने भी मैं नजूमी ते नहीं हाँ, ज्योतिषी ते नहीं हाँ, पर मैं दस सकदा बदकिस्मत बंदा कौन है, बदबख्त कौन है, मैं दस सकदा। तो चलो दसो बदबख्त कौन है? गुलिस्तान विच दसदा है, हुण ते खुशकिस्मती गुलिस्तान बोस्तान पंजाबी भाषा विभाग ने, पंजाब गौरमेंट ने छाप दित्तियां ने, पंजाबी दे छाप दित्तियां। कहिंदा मैं दस सकदा बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है? गर इंसाफ पुरसे बद अख्तर कस अस्त के दर राहतश रंज दीगर कस अस्त। कहिंदे जिस बंदे दी राहत दूजे दे रंज ते खड़ी है, जो दूजियां दे रोने दे चों हासे लभदा है बदबख्त है, जो दूजियां दी बेइज्जती दे चों इज्जत लगदा है बदकिस्मत है, जो दूजियां नूं रोंदा होया वेख के हसदा है बदबख्त है, जो दूजियां दे दुख दे चों सुख लभण दी कोशिश करदा है बदकिस्मत है। ये बेड़ा मनुख है, ये बहुत दुख भोगेगा। ये फकीर इंज कहिंदा, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, हरी दा भगत अभ्यासी नाम अभ्यासी ऐसा चाहिए जैसा हरी है, जैसा हरी स्वभाव करके। हरी निर्वैर है, निर्भय है, समदिष्ट है, दयालु है, कृपालु है, ज्ञान दा सागर है, प्रेम दा सागर है। जदे सारे गुण मनुख दे आ जांदे ने, मनुख ईश्वर वर्गा हो जांदा है। कबीर ने ते स्वयं दावा कर दिता है, बिगड़ियो कबीरा राम दुआई साच भयो अन कथे न जाई। मैं सच हो गया, गल खत्म। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। कबीर कहते ना आप सच हो गए, सच हो गए। सच होना ही मनुख का भविष्य है, परमात्मा होना ही मनुख का भविष्य है। इस तो पहले संतुष्टि नहीं होगी, मन किधरे भी नहीं टिकेगा, पता ही नहीं टिकेगा, क्योंकि मन का वो सिंघासन ही नहीं है, मन का वो घर ही नहीं। मैं कल अर्ज की सी, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। मन का घर परमात्मा है, किधरे भी नहीं टिकेगा, किधरे भी चले जाए, कुछ भी प्राप्त हो जाए, मन की वो खुशी 4 दिन की होगी, फिर दुख बनया रहेगा, फिर कलेश बनया रहेगा, फिर बेचैनी बनी रहेगी। ये समझ जिसनों आ जाए, समझ लो मन ज्यादा जा गया। मैं अर्ज करा हूं मनुख के अंदर, किसी के अंदर पशु के संस्कार बड़े प्रबल होंगे, किसी के अंदर बनस्पति दे, किसी के अंदर पत्थर दे। असी कह देने ये पत्थर दिल है,
ਇਹਦਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਪੱਥਰ। ਹਿਟਲਰ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ ਮਨੁੱਖ, ਇਤਨਾ ਸਖਤ ਮਨੁੱਖ, ਬਸਤੀਆਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੜਪਦਿਆਂ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਹਲਾਕੂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਹਿਟਲਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੱਥਰ ਦਿਮਾਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੋ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਆਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਵੀ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਨੈਕ ਟੈਂਪਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਊ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜੰਡ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਬੋੜ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਬੇਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਦੇਖੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੀਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਥਰ ਹੀ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਹੀ ਮੂੰਗਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਹੀ ਪੁਕਰਾਜ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਹੀ ਨੀਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਜ ਦੇ ਜੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਨੀਲਮ ਦਾ ਮੋਹਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਚ ਨੀਲਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਨੀਲਮ ਦਾ ਪੱਥਰ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਹੈਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਚਮਕ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਕੋਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਪੱਥਰ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਕੇਸਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਹੈ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ। ਕੁਛ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਗਊ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਹੈ, ਮੋਰ ਹੈ, ਹੰਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਹੈ ਤੇ ਹੰਸ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਹੋਵੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਰੀ ਗਊ ਹੈ, ਨਿਰੀ ਗਊ ਹੈ। ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੀ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਨਿਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਹੀਰ ਹੈ, ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ। ਪੱਥਰ ਚਮਕ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਅੱਗੇ। ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮਹਿਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਭਲੇ ਮਾਨਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੱਥਰ ਚਮਕ ਗਏ, ਪੱਥਰਾਂ ਚਮਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੱਥਰ ਚਮਕ ਗਏ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਚਮਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਹੋ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੀਰਾ। ਖੈਰ ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਜਾਗ ਜਾਏ, ਤੋ ਹੀਰੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਗਊ ਕੀ ਏ, ਚੰਦਨ ਕੀ ਏ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਆਈ, ਸਾਚ ਭਇਓ ਅਨ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਤਨਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਗਿਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਸਦੇ ਚ ਉਤਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਅਚੇਤ ਭਾਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਖਤ ਬੋਲ ਨੇ, ਦਿਲ ਬੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਾ, ਬਾਕੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੱਥਰ ਪੂਰਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁੱਤੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਾਗੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾਗ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਯਤਨ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਚੇ ਜ਼ੂਦ ਬਰਾਇਦ ਦੇਰ ਨਾ ਪਾਇਦ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਗਾਲ, ਗਾਲ ਨਾ ਗਾਲੇ, ਗਾਲ ਨਾ ਗਾਲ, ਗਾਲ ਕੇ ਕੁਛ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਦੇ ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ। ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਚੌਰਾਏ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣੇਗਾ, ਪਛੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਬਣੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਜੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੱਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਵ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਭਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਖੱਬੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਲੀਨ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। 6 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਚ ਹਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹੂੰ ਜਚ ਗੰਧਰਵ ਉਹ ਰਗ, ਕਹੂੰ ਵਿਦਿਆਧਰ, ਕਹੂੰ ਭੈ ਕਿਨਰ ਪਿਸਾਚ, ਕਹੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਪਿਸਾਚ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪਿਸਾਚ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਜ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਜਦ ਇਸ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸੇ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ, ਮੋਸੋਲੈਨ ਨੇ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ, ਹਲਾਕੂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਹਰਨਾਕਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ, ਪੱਥਰ ਦਿਮਾਗ। ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸਾਇਣ ਤੇ ਡਾਇਣ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੇਵ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਜਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ 100 ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਟ ਹੋਵੇ, 90 ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੋ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਅਤਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੂਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ 10-12-13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਰੇ, ਇੱਧਰ ਕਿਧਰੇ ਗਰਭ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ? ਨਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਸਕੇ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਭੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ। ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਢਾਂਚੇ ਬੜੇ ਛੇਤੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਲ
नरगिस अपनी बेनूर ही पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कदी कदी मनुखी गुलिस्तान दे कुछ ऐसा फुल फुल खिड़दा है जो मनुखता नु मुअत्तर कर देंदा है, बागो बाग कर देंदा है, कोई नवी क्रांति लेंदा है, पर कहिंदा हजारां साल उड़ीक करनी पैंदी। बड़े लंबे समय तक ये देव उड़ीक करदे ने, इस दे इको सिमरे देव याद कर दे सानू जन्म मिले, पर हर गोद दे राही नहीं आना चाहते। जिमें बंजर जमीन दे गुलाब नहीं पैदा होंदा, घास कंडे पैदा हो जाते हो जा, गुलाब नहीं पैदा होंदा, चंदन नहीं पैदा होंदा। हर गोद देवते नू जन्म नहीं दे सकदी। अजोका समाजिक जीवन इतना भ्रष्ट हो गया, गुस्ताखी माफ, इतना मैला हो गया। गुरु नानक देव जी महाराज एक दो शब्द उच्चारण कर रहे सामने आ गए ने, हुण मैं कह ही रहा। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिगड़ा। इस कलयुग दे इस दौर दे जिन्हां दा जन्म हो रहा है, पूत प्रेतां दा जन्म हो रहा है। गुरु नानक पुत जनूरा धी जनूरी, पुत जिन बहुत है ती भी जिन बहुत है। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा ती जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। ये जिन भूतां दा जन्म क्यों हो रहा है? महाराज कहते समाजिक जीवन भ्रष्ट हो गया है। किस तरह भ्रष्ट हो गया है? तो सतगुरु दसते ने रन्ना होइया बोधियां, पंक्तियां ना आउंदियां, बाणी ना आउंदी, ते मैं कहना भी नहीं सी ग्रस्ते आदमी हां मैं, एवं कोई दिल तोड़न वाली गल नहीं कर रहे। पहले पातशाह दे बोलने रन्ना होइया बोधियां, पुरख होए सयाद, सील संजम सुच बन्नी, खाणा खाज अखाज, शरम गई घर आपने, पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा वाल। इसरी ते शरीर दी नुमाइश दे च लग गई बोधियां, चंचल अत्यंत चंचल हो गई, वो ते शरीर दी प्रदर्शनी करना चाहती है। यूरोप दी स्त्री ते इंज कह लो कम से कम 80% ते लगन हो गई शरीर दी प्रदर्शनी करनी है, शरीर दी नुमाइश करनी है। नक्शे कदम ते बाकी दुनिया भी चल पी है, एशिया भी चल पी है। रन्ना होइया बोधियां, पुरख होए सयाद, ये पहले पातशाह जी दे बोले। सयाद फारसी का लफ्ज है, पुरुष शिकारी ने देखना चाहते, इस तरह का फैशपना देखना चाहते, ये तो शिकारी ने। तो स्त्री इतनी चंचल और नुमाइश करना चाहती है। सील संजम सुच भन्नी, कोई शील नहीं रहा। सील संजम सुच भन्नी, खाना खाज अखाज, शर्म गई घर आपने, पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा। शर्म हया ते पता नहीं कित्थे चली गई। हुण घर घर विच जिन भूत नहीं पैदा होणगे तो और की होवेगा? कली अंदर नानका जिन्हां दा अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी। जिन भूतां दे पैदा होण दा माहौल है, भाव माड़े सूक्ष्म ढांचे जिहड़े शरीर ने उन्हां दे पैदा होण दा माहौल बनिया होया है। देवते पैदा हो सकन माहौल नहीं है। कोई 2-2.5 हजार साल पुराना इतिहास देखिए भारत का, कहिंदे हर दूजे तीजे घर दे देवता होंदा सी, देवी होंदी सी। लोकी कहिंदे सने मनुख नहीं है देवता है, इंद्र देवता सी, शिवजी देवता सी, विष्णु देवता सी, जमीन दे ही बंदे सन। जिवें अमृतसर वसाया धन गुरु रामदास जी महाराज ने, बनारस शिवजी ने वसाईए, जमीन दा ही मनुख सी। हर दूजे तीजे घर दे कोई देवी होंदी सी, देवता होंदा सी। लोकी कह देंदे सने मनुख नहीं, इहदा दीवा जलिया होया देवता है। माहौल इस तरह बदल गई है, हुण हर एक अद घर नो छड़ के दूजे तीजे घर दे भूत प्रेत ही ने। गुस्ताखी माफ, सतगुरु इस तरह कह रहे हैं। हुण देवतियां दे दर्शन औखे हो गए, भूतां प्रेतां दे दर्शन करने ओ ही जन्म लेंदे। फिर संक्षेप दे जो है मैं अर्ज करा लमकावां ना, मनुख दी जीवन यात्रा उत्थे समाप्त होवेगी जिथों चली सी, जित दुआरे उबरे, जिथों उबार होया, जिथों असी आया।
परमात्मा तो आया, परमात्मा ते यात्रा समाप्त होगी। परमात्मा साडा घर है। किड़े दरवाजे तो आया? शब्द दे दरवाजे तो आया। उत्पत पर लो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होए, क्योंकि कीता पसाओ एको कवाओ। एक कवाओ तो सारा पसारा होया, एक शब्द तो सारा पसारा होया। शब्द दरवाजा है। हुण बड़े ध्यान नाल सुनना, जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है वही शब्द दे रूप दे गुरु है, जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। नानक सौदे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुरु नाही दे। फिर दो नाम क्यों ने? दो नाम इस वास्ते ने, एक दर है एक घर है। पर दर ऐसा जो घर दे नाल जुड़े होया है। दर तो लगना है ते घर दे प्रवेश करना है, शब्द दा जप करना है ते शब्द ने प्रकाश कर देना है। बस इन्नी ही गल है। सुते मनुख नु किस तरह जगाओगे? आवाज नाल जगाओगे ना। एक मनुख सुता पे है, कुछ खड़ाक करोगे ना, आवाज करोगे ता जागेगा ना, ताऊ दी नींद टूटेगी। सुते मन नु किस तरह जगाओगे? सिमर सिमर गुरु सतगुर अपना, सोया मन जागा। वाहेगुरु, वाहेगुरु दा जप वाहेगुरु नु सुनाण वास्ते नहीं है, अपने आप नु जगाण वास्ते। ए बारीकी हुण मैं थोड़े सामने रखदे हां। पूरा सुत्ता होया मन पत्थर है, पूरा जागया होया मन परमात्मा है। पत्थर दा भविष्य है परमात्मा होना। पत्थर नू प्रकृति बनस्पति च ले आई, पशुआं च ले आई, मनुखां च ले आई, इत्थे तक प्रकृति ले आई। मनुख नू प्रकृति ने खुला छोड़ दिता, स्वतंत्र है। तेरी मर्जी है सच बोल, तेरी मर्जी है झूठ बोल, तेरी मर्जी अखां बंद करके चल, तेरी मर्जी अखां खोल के चल। कर्म करण दी स्वतंत्रता है, लेकिन फल दी स्वतंत्रता नहीं है। जैसे मैं मकई भी बोदे हां ते फिर मैनू ख्याल आया मैनू ते कणक चाहीदी सी, एवें गलती हो गई, मकई बीज बैठा। अच्छा हुण मैं अरदास करां, परमात्मा मेरे कोल गलती हो गई है, भुल हो गई है, तू कणक पैदा कर दे। नहीं, कणक तां पैदा होवेगी जे कणक बीजनी सी। इते आप बीज आपे ही का, इते जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा के। कर्म बीज ने ते फल की है दुख ते सुख। छोटे दुख ने, छोटे छोटे वो बीज बोए ने जिथों छोटे दुख पैदा हो रहे ने। वड्डा दुख बहुत वड्डे बीज इसने बोए ने, तां वड्डा कलेश है। छोटे छोटे सुख ने इन्हें छोटे छोटे बीज बोए ने, छोटी छोटी भलाई की थी। परम आनंद है, परम रस है, इन्हें बहुत महान बीज बोए ने। कर्म भूमि में बोवो नाम, ये धरती शरीर कर्म भूमि है। महाराज कहने नाम दा बीज बाओ, कर्म करना भी है तो वाहेगुरु वाहेगुरु जपो, परम आनंद पैदा होवेगा, परम रस पैदा होवेगा, परम खेड़ा पैदा होवेगा। पर जिस ढंग नाल जपण दा सतगुरु कहंदे ने, ये इतना औखा है, इतना औखा है, किधरे मेरी निर्माणता ना समझ लेने। मैनू 50 साल दे करीब होने लगे ने कथा करदे आ, बड़े उतार चढ़ाव में इस जिंदगी च देखे ने, और बड़े बड़े अनुभवी पुरुष भी देखे ने, जिन्हां नू देख के परमात्मा चेते आंदा है, ऐसे पुरुष भी देखे ने, और बड़े जलील कुबड दुष्ट भी देखे ने, और पाला भी पैंदा रहा, दुष्टां नाल भी पाला पैंदा रहा, भगतां नाल भी पैंदा रहा। पर एक गल जो मेरी समझ च आई है, अजे भी उसनू अपनाण विच मैनू सफलता नहीं मिली। इस वास्ते किधरे मैनू निर्माण भी ना समझ लेना, ये मेरी फोकी निर्माणता नहीं, एक असलियत बयान कर रहे हैं। दूसरा किधरे ये भी ना समझ लेना कि इनू अनुभव होवेगा ता कहिंदा, नहीं अनुभव किवें होंदा इसका मैनू पता है, इतना अहंकार मैं कर लेना, चलो इंज कह दो, इतनी गल कर देना। मनुख का मन किवें जाग सकता है इतना मैनू पता है, पर मन नू मैं पूर्ण तौर ते जगा सका इस तरह की सफलता मैनू नहीं मिली। पर मैनू समझ आए, ये मैं सतगुरु की हजूरी च इतना दावा करदा, ज्यादा नहीं।
किस तरह जागोगे? वाहेगुरु वाहेगुरु की धुन मन नु जगाण वास्ते है, वाहेगुरु नु सुनाण वास्ते नहीं है, उन्हें कोई सुनाण वास्ते नहीं है। वो तो बिना बोलिया सब कुछ जानता, किसा के कीचे अरदास। फिर ये उच्ची उच्ची वाहेगुरु वाहेगुरु ये मन नु जगाण वास्ते, ते मन कदों जागेगा? मन सुने, मन नहीं सुनता, पुके नहीं सुनता। 50 साल तो जिहड़ी गल मैं थोड़े सामने कर रहा ना, इहदे च असफलता है, मन नहीं सुनता, मन बोलता है, इहदे बोलण दी आदत है। हुण जबान भी बोले ते मन भी बोले ते कौन सुने? फिर हर एक दी कोशिश होंदी है दूजा सुने जी, दूजा सुने। 10-10 हॉर्न लाए होंदे ने पंजाब दे पिंडां च, गुरुद्वारे दो बंदे नहीं बैठे होंदे, ते मैं जद पुछ बैठा 10 हॉर्न लाए ने, पिंड सुने, हद हो गई पिंड सुने, तू भी सुने कदी? सुनना सौखी खेड नहीं है, कठिन है। अगर मन सुन लवे तो मन परमात्मा का रूप हो जाता है। हुण खास नुक्ते थोड़े सामने रखते हैं, इन्हां 15 मिनटां च गल पकड़ ले चा जाए। जद मनुख बोलता है, बोलण का पुरना पैदा होंदा है, पवन नाभी नाल टकरांदी है। देही माठी बोले पवन, असी बोलते हैं पवन तत् करके, बोलना पवन तत् की प्रकृति है। इस वास्ते पवन नू बाकी तत्तां दे गुरु कहा है। अगर मनुख बोले ना तो संबंध जुड़ते नहीं, बोल के ही संबंध टुटते हैं, बोल के ही संबंध जुड़ते हैं। टुट गई प्रीत बुर बोल, एक बुरा बोल बोलिया कई सालां दी दोस्ती दुश्मनी च बदल गई। गंड परीति मिठे बोल, एक मिठा बोल बोलिया उपरा मनुख अपना हो गया। मनुखी दुनिया च खेड सारी बोलां दी है, ते बोलना पवन करके। इस वास्ते सतगुरु सुनो, गुरु कहिंदे ने देही माठी बोले पवन, जैसे मन विच पुरना पैदा होंदा है बोलना है, पवन नाभी नाल टकरांदी है। नाभी थोड़ी जिहा खुलदी है, जैसे खुलदी उत्थों आवाज उठती है, उस आवाज नूं कहिंदे ने परा। एक धुन ते होंदी है, उहदे च अखर नहीं होंदे, एक धुन उठती है। वो जद हिरदे तक पहुंचती है उन्हों अखर मिलते हैं, फिर इन्हों कहते हैं पसंती। बड़े ध्यान नाल सुनना, उही आवाज जद कंठ तक पहुंचती है इन्हों कहते हैं मधमा, पूरा वाक बन जाता है जो जबान ने कहना है, ते जबान बयान कर देती है। इन्हों कहते हैं बैखरी, परा पसंती मधमा बैखरी। नाभी तो आवाज कदों उठती है? जब पवन टकरांदी है। पवन कदों टकरांदी है? जब मन विच फुरना पैदा होवे बोलना है, बोलना है। पवन नाभी नाल टकरांदी है, नाभी तो धुन उठती है, हृदय तक पहुंचती है, अखर मिलते हैं, यह कम सारा तेजी नाल ऑटोमैटिक होंदा है। इनू पसंती कहते हैं। यह फिर कंठ तक पहुंचती है, पूरा वाक बन जाता है जो कहना है, इनू मधमा कहते हैं, तो जबान बयान कर देती है, इनू बैखरी कहते हैं। परा पसंती मधमा बैखरी, ये जिहड़ी बैखरी बाणी है वाहेगुरु वाहेगुरु बैखरी है। हुण इहनू परा करना है, जिथों ये धुन उठी है उत्थे लै जानी है। इहनू गुरबाणी इंज कहिंदी है, उल्टी गंगा जमन मिलाओ। गंगा जिथों निकली है, जिथों जन्मी है, उल्टा के हुण इसनों उत्थे ही लै जाना जिथों निकली है। हुण दरिया जिथों निकलिया है उसे जगह ते वापस लै जाना। अक्सर दरिया 100% करीबन पहाड़ां तो निकलदे ने, उचाइयां तो आंदे ने, ते दरिया नूं पलटा के उत्थे ही लै जाना जिथों निकलिया है, कठिन है, कठिन। जमीन दे उत्ते मनुख इस तरह नहीं कर सकदा, होया नहीं, अज तक कामयाबी नहीं हुई, ऐसा हो नहीं सकता। जिथों गंगा निकली है, गंगोत्री तो बद्री नारायण तो भी परे है, गालबन 32,000 फुट है, एवरेस्ट जितनी ऊंचाई है। एवरेस्ट 35,000 फुट कह देंदे ने, ये जरा थोड़ी जिहा घट, लेकिन उस वर्गी है, उतनी बिखड़ी है। उत्थों निकलती है ये गंगा, और कबीर कहिंदे जिथों निकली है उत्थे ही लै जाणी है, पलटा के उत्थे ही लै जाना। यह धुन जिथों उल्ट निकली है पलटा के वापस लै जानी है। धुन
जो नाभि तो उठिए जबान दे राही प्रगट होइए कन्ना दे राही वापस जाएगी। सरवनन गोविंद गुण सुनो अर गाओ रसना गई। इस धुन नो जबान दे नाल बार प्रगटाना बड़ा आसान है। सारा दिन गपशप चलती रहती है, वाहेगुरु वाहेगुरु भी दो दो घंटे चलता रहता है। यह भी मैरज कर दिया, इको दफा वाहेगुरु आखण नाल मनुख वाहेगुरु का रूप हो जाता है। इको ही दफा एक चित जाए एक छिन दे आयो काल फास के बीच ना आयो। चलो मैं कह दिया करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आख दया, एक पाप भी नहीं मिटेगा, एक दुख भी नहीं मिटेगा। एक दफा वाहेगुरु आखद्या करोड़ा पाप मिट जाते, करोड़ा दुख मिट जाते। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखना सौख है, सौख है, बहुत सौख है। एक दफा वाहेगुरु आखना बहुत औख है, बहुत औख है। जबान बोले ते मन पूरी एकाग्रता नाल सुने औख है, पर करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखना है मता किधरे एक दफा वाहेगुरु कहण की जाच आ जाए। बस इन्नी गल, खेड एक दफा नाल बनेगी, दो दफा नाल नहीं। प्रभु दे नाम दी इतनी महिमा एक दफा नाल गल बनेगी। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित छूटे। कीड़ा एक दफा जबान उच्चारण करे वाहेगुरु उठी ते धुन नाभीत हो ते धुन वापस नाभी तक जावे। हुण सुन के जाएंगे, मिनट थोड़े रह गए ने, इसे च मैं गल पूरी करा। जैसे मनुख एकाग्रता नाल सुनेगा ये धुन कन्ना दे राही वापस जाएगी। जिस रस्ते तो आई ये जाएगी उसे रस्ते तो वापस। जैसे धुन कंठ तक पहुंची ऐसे मनुख नो वाहेगुरु वाहेगुरु आखण दा रस आवेगा। इदी धुन मधमा तक पहुंच गई है। ऐसे मनुख नु कहंदे ने वाहेगुरु एदी रसना ते वस गया। जैसे भोजन दी बुरकी मुंह च पाई स्वाद ते आ गया, पर ए भोजन अजे खून नहीं बनया, अजे नसा दे गर्दिश नहीं पिया करदा, अजे कंठ तो थले ही नहीं गया, अजे मास नहीं बनया, अजे चर्बी नहीं बनया, अजे खून नहीं बनया, स्वाद ते आ गया। जिन्हों वाहेगुरु आखण दा स्वाद ही नहीं आ रहा, यकीन जानो अजे मदमा की खेड भी नहीं बनी, अजे इंज कह लो बुरकी मूह च भी कोई नहीं, गुस्ताखी माओ। वाहेगुरु आखण दा स्वाद आ गया, इसनु कहंदे ने प्रभ जी बसे साध की रसना। नानक जन का दासन दसना जबान ते वस गया पहचान। ये वाहेगुरु कहंदा रस नाल भर जांदा, ये बाणी जपदा रस नाल भर जांदा, बेरसे बाणी नहीं जपदा। कारण शब्द गहरा चला जाता है कंठ तक, इतना सुनता अजे इतनी गहराई है। सहजे सहजे ये होर गहरा चला जाए पसंती, स्रोत इतनी गहरी हो जाए। जितनी स्रोत गहरी होगी उतना आनंद वधेगा, उतना अनुभव वधेगा, उतना ज्ञान वधेगा। ऐसा मनुख अनाहद नाद सुन लग पैंदा। केड़ा अनाहद नाद? जिस नाद तो सारा ब्रह्मंड पैदा होया। कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। ऐसा मनुख अनाहद दी धुनी सुन लग पैंदा। मैं अपनी जिंदगी च पंज सत मनुख ते ऐसे देखे ने जो अनाहद सुन दे सन। कल भी एक सज्जन इत्थे मैनू मिलिया, इत्थे बैठा नहीं है, मैनू इस तरह कहण लग पिया। कुछ चेहरा उसका लगता सी मैनू, कुछ बोलां दी सच्चाई भी लगती। खैर मुख्तसर मैरज करा। आहत जो दो चीजां दे टकराव तो पैदा होंदा है, अनाहत जो परमात्मा तो आवाज आई है, वह आवाज जिस तो ब्रह्मंड बने है। मां बाप तो शरीर आया है, तो शरीर विच मां बाप दी अंश मौजूद है। आवाज तो शब्द तो ब्रह्मंड आया है, तो शब्द ब्रह्मंड विच मौजूद है। इस शरीर विच मां बाप की अंश मौजूद है, क्योंकि मां बाप तो शरीर आया। मां की रकत पिता बिंदारा। शब्द तो ब्रह्मंड आया, तो ब्रह्मंड दे शब्द मौजूद है। उस शब्द नूं अनाहद नाद कहिंदे ने, परमात्मा की आवाज कहिंदे ने। ए धुन वापस पसंती हिरदे तक पहुंच जाए ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनदा। हुण थोड़ा जिहा पड़ाव रह गया, इत्थे मनुख बड़े तरले रहिंदा है। प्रभु
तेरी आवाज ते सुनाई दे रही है, हुण तैनू देखण दा चार। ऐसे मनुख नू कह देंदे ने कि दर तक पहुंच गया, क्योंकि अनाहत तो उत्पत्ति सी ना, कि दर तक पहुंच गए। इसे नू कबीर कहिंदे ने, दरमा दे ठांडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे, खोल के वाड़ केड़े दरवाजे। कोई बाहर दे दरवाजे नहीं, ये पसंती तक पहुंच गए, उस अवस्था का जिक्र करता है। ये अनाहद नाद सुनन लग पे, कहिंदे ने ये परमात्मा दे दर दी नौबत है। राजे महाराजे बादशाह लोग अपने दरवाजे ते सवेरे शाम नौबत वजांदे सन। हजूर साहब सवेरे शाम वजदी है, शायद आपने विचों कई ने दर्शन किए हैं। दो नगारची बैठे हैं, उन्होंने शहराई वजदी है, उन्होंने नौबत वजना कहने। ये लिया ख्याल संतां तो है, ब्रह्म ज्ञानियां तो, भाई परमात्मा के दरवाजे ते नौबत वजदी है। जग मग जोत अनहद धुन गाज है, भाई साहब भाई गुरदास जी, अनहद की धुन वजदी है। ऐसा मनुख सुनन लग पैंदा है, तो ऐसा मनुख दर तक पहुंच गया है। नौबत दरवाजे ते वजांदे ने बादशाह लोग, नवाब लोग दरवाजे ते, हजूर साहब भी पौड़ियां दे च नौबत वजदी है दरवाजे ते, दर ते। ये प्रतीक चुने आगे, जैसे धुन पसंती तक पहुंचती है, ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनता है। पर ऐसा मनुख कहिंदे, प्रभु तेरी आवाज ते सुनाई दे रही है, दूरों सुनाई दे रही है, हुण तेरी झलक मिले, तेरे दीदार करदे आ। तां ही कबीर इत्थे प्रार्थना करदे ने, अनाहद नाद तक पहुंचे है, दरमां दे ठांडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे, खोल के वार। हे प्रभु हुण दरवाजा खोल, दर तक पहुंच गया। जिदी सुरत शब्द नाल जुड़ गई, वह गुरु तक पहुंच गया। गुरु तक पहुंचना बंदे दा कर्म है, फिर अगों गुरु दा कम है प्रभु तक पहुंचाना। सानू इतनी मेहनत करनी है सुरत शब्द तक पहुंचे, अनाहद नाद तक पहुंचे, अगों फिर गुरु पहुंचा देंदा है। उस अनाहद नाद नहीं दरवाजे खोल देना। अगर इत्थे जप जारी रहे और जप घट जांदा है, क्यों? मनुख अनाहत दी धुन दे ज्यादा मस्त रहने लग पैंदा है। धुन अगर गहरी चली गई तो नाभी नाल टकराई, नाभी पूरी खुल जाएगी। जल्दी जल्दी मैं बयान करना, नाभी दो हालतों में पूरी खुलती है। एक उदों जब आखिरी प्राण नाभी दे चो निकलता है, आयुर्वेद आचार्य मनते ने आखिरी प्राण नाभी दे चौंदा है। हाथ दे चो प्राण निकल गए, हाथ सुन्न हो गए, जबान दे चो निकल गए, जबान सुन्न हो गई, अखां चो निकल गए, हुण अखां नहीं देख रही, पैरां चो प्राण निकल गए, पैर सुर हो गए, पर बंदा जे जीवदा है आखिरी प्राण नाभी दे चौंदा है। उन्हूं कहिंदे ने आज काल खुले तेरी गांठड़ी, अज कल तेरी नाभी गंढ खुलण वाली है, खुलेगी। मौत दे समय खुलदी है, जब खुलदी है तो शरीर की हालत यह होंगी है, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से, सने लोग कहने गंड खुल गई, नाभी खुल गए, आखिरी प्राण रुखसत। इहदे नाल शरीर की मौत हो जाती है, पर जैसे धुन नाभी नाल टकरांदी है उदों भी नाभी पूरी खुलती है। शरीर की हालत तो उही बनती है जिहड़ी मौत दे समय बनती, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होवा से। इत्थे शरीर की मौत नहीं आउंदी, मन की मौत हो जाती है। मन परमात्मा बन जाता है, मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछा। इत्थे आके कई घबरांदे ने, उन्होंने इंज दिसदे जिवें गए सी, वाकई पुराने संस्कार पुराना ढांचा, अज तक जो हजारा जन्म होए जिस ढंग नाल जीवें सब खत्म होंदे। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के पाटे कागर। वो जन्मां जन्मांतरां दे अंदर जिहड़े कागज पै सन सब पट गए, धर्म राय दर कागज फारे, जन नानक लेखा समझ, अंदर वो सारा लेखा पे है। जैसे वो फटदा है ते मनुख नूं इंज लगदा है जिवें मेरी मौत आउण लगी, कई मुड़ देने। इस तरह मैं देखे ने घबरा के, आखिरी स्टेज तो मुड़ देने घबरा के, भई तो मौत आउण लगी। शीशगंज साहब दे
ਇਹ ਜਦ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਮਨ ਇਹ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਰਨੌਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆਇਆ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਜੋ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਮਨ ਦੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਤੂੰ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਰੋਈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੀਜ ਜਦ ਮਿਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਜਦ ਮਿਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਟਣ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੋਧ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਹੂ ਹੋਆ ਸਿਹਤ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਹੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚਿਟਿਆਈ ਹੂ ਬ ਉਸ ਆਖਰੀ ਜਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਖ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਨੁੱਖ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਬੋਧ ਹੋਵੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦੋ ਗੰਢ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਤ ਹੈ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਹਰ ਰੋਮ ਰਸਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੰਗਾ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਥੇਮ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਥੇਮ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦਜਲਾ ਫਰਾਤ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦਜਲਾ ਤੇ ਫਰਾਤ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚਲੀਨ ਨਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਸ ਵੀ ਗਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵੀ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਵੀ ਗਈ ਜਮਨਾ ਵੀ ਗਈ ਦਜਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਫਰਾਤ ਵੀ ਗਈ ਨੀਲ ਨਦੀ ਵੀ ਗਈ ਥੇਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਗਰ ਹੀ ਸਾਗਰ ਹੈ ਬੂੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਰਾਮ ਕਬੀਰ ਏਕ ਬਹਿ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਮਨਸੂਰ ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ੁਨੈਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਇਹ ਮਨਸੂਰ ਕਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿਸਰ ਦਾ ਕਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਗਈ ਅਭਿਆਸੀ ਬੜਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਲਾਹੋ ਅੱਲਾਹੋ ਅੱਲਾਹੋ ਜਪਦਾ ਸੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਸਦਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੈਸੇ ਨਾਭੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲੀ ਨਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਨਲ ਹੱਕ ਅਨਲ ਹੱਕ ਹੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਬੈ ਇੰਜ ਕਹਿ ਉੱਠਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਹੀ ਫਿਰ ਨਾ ਆਖੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਰੂਰ ਚ ਕਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾ ਆਖੀ ਕਾਰਨ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਜਦ ਸਾਗਰ ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਗਰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਸੋ ਹਰ ਹੀ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਮੈਂ ਵੇਦ ਕਛ ਨਾ ਏਕ ਜਨ ਕਈ ਮੈਂ ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਖੈਰ ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜ਼ੁਨੈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਫਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਆਖੀ ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਜ਼ੁਨੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਅਗਰ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਕਾਰਾ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੋਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ
पंज प्यारियां नूं लंगर छकाना जिवें साडे च मर्यादा उन्हां दे विच ही है फकीरां नूं लंगर छकाना। कारा दे जिहड़े वड्डे वड्डे फकीर सन सारियां नूं दावतनामे भेजे गए और आख्या गया सारे पहुंचो अज शाम नूं। अंदाजन इतिहास दे ऐसा है 50-55 दे करीब सन। जुनैद नूं भी उचेचा है दावतनामा आया भी पहुंचना, चूंकि जुनैद वड्डे फकीरां च गिणिया जांदा सी। ज्यों चल के तैयार होके चलन लगा ना तो कहन लगा, बेटा मंजूर रोटी ते तू ही खानी आनी है, ते हर एक ने एक एक दो दो चेले लै जाने, मैं होर ते किसे नूं नहीं लै जाना, तू चल मेरे नाल। चल पिया। हुण इतने सारे फकीर बैठे, उनके विचकार बादशाह बैठा सी, दस्तरखान एन गोल दायरा जिवें इस्लामी ढंग है, सारिया दे अंदर भांडे रखे जा रहे सन, सारिया दे अगुवस में समाप्त करदा। इतने फकीर आन ते गल ते रब दी चलेगी ना, खुदा दी चलेगी। वारी वारी सारे रब दी गल कर रहे ने, पर सुनैद जद रब दी गल करदा सी उदों ही गल करदा सी जद उहदे मन दी तैयारी ना होवे, तैयारी होवे। जद तैयारी ना होवे साफ कह देंदा सी, मैं नहीं कहना, अज मेरा मन तैयार नहीं है, ते मन तैयार नहीं है मैं जबान नाल मैं नहीं कहना चाहता। जद वारी आई जुनैद दी, उस दिन मन उसका तैयार सी। इतने फकीरां नूं देख के वाइब्रेशन इस तरह की बन जाती है। उन्हें जद गहराई च गल्लां कहनियां शुरू कीतियां, कोल बैठा सी मंसूर निकल गया, आनल हक आनल हक आनल हक। काजी भी बैठा, नवाब भी बैठा, गुस्से च आया नवाब जुनैद नूं, कहिंदा काफर नाल रखे तू, चेले के ही रखे ने, काफर रखे ने तू, काफर नूं इत्थे लैके आया, मेरा सारा यह धार्मिक समागम तू भ्रष्ट कर दिता, काफर नूं लैंदा है। मंसूर पकड़िया गया। मुख्तसर मैं अर्ज करा, 15 दिन उस ते मुकदमा चलिया, 16वें दिन सजा सुनाई गई, इन्हूं सूली ते चाड़ो, ते सूली ते चाड़न तो पहले पत्थर भी मारो। बस आखिरी घटना मैं थोड़े सामने बयान करा, फिर किसी वक्त बाद। जिस वक्त इसनूं सूली ते चाड़न वास्ते ले जा रहे हैं हजारां दा इकट्ठ, उदों जुनैद भी पहुंचे है इस भीड़ दे विच, मंसूर दे कोल गया। उन्हें जेडे बोल कहे ने बड़े कीमती ने, मंसूर ए मेरे बच्चे, पागलों की भीड़ विच इतना सियाणा हो जाना भी मैनू इंज लगता है जिवें पागलपन है, पागलपन। गुनाहगारां की भीड़ विच इतना पुनीत हो जाना, इतना सवाबशील हो जाना, यह भी एक गुनाह है, मैनू इस तरह लगता है। भीड़ पागलों की सियाणा तो एक मैं नहीं बचा सकता, तैनू नहीं बचा सकता। मंसूर भी कहिंदा, मेरे मुर्शद मरे हुए नूं की बचाना, शरीर ते है ही मुर्दा, इहनूं की बचाना, ते मंसूर नूं कौन मार सकदा है। जुनैद कोल गल रही नहीं गई, कहिंदे गल सुन, तू खुदा दी कसम चुकी सी अनल हक नहीं कहांगा, तू के है, मैं तेरे ते गिला करन भी आया, तू खुदा दी कसम क्यों तोड़ी है, बस इतना मैं ये भी पूछना है, ठीक है, इस तो बाद तू रहेगा नहीं, मैं ये पूछना चाहना, तू खुदा दी कसम क्यों तोड़ी है। अखां भरिया ने मंसूर दियां, ए मेरे मुर्शद मैं कौन आना खुदा दी कसम तोड़न वाला, ते जे खुदा ही आखन लग पवे अनल हक अनल हक, तो बेचारा मंसूर की करे। कहिंदे ने उस दिन इस्लामी दुनिया च घटना घटी, जुनैद ने अपना मस्तक अपने चेले दे कदमां ते रख दिता, तू ठीक कहना है, खुदा बोले है तू नहीं बोले है। साच भयो अन कते न जाई, कबीर कहिंदे ने, नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यो पानी संग पानी, मनुख दा गोविंद होना ही भविष्य, गोविंद च गोविंद होना ही भविष्य, और कोई भविष्य नहीं है। जिथों आया जित दुआरे उबरे, तिथे लेव उवार, आया गोविंद है गोविंद तक पहुंचे, ते यात्रा सफल है, नहीं ते नहीं, सफल सफल भई सफल यात्रा, आवण जान रहे मिले सादा। इतनिया विचारां प्रवान करनिया, सतगुर रहमत करन इसे जीवन दे ये जीवन यात्रा साड़ी सफल होवे, परम अवस्था नूं असीं प्राप्त कर सकी। बोल चुक दी शमा, सारयां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु बोले।